0: से मत देखो, मेरा दिल धड़कता है।
1: दिल हाय मेरा दिल, तेरा दिल, दिल से दिल मिल गया।
2: Beautiful songs for a Sunday afternoon, 13 over 16.

0: जंजीरों
1: से गिरा फिल्म पोमेलो
0: प्रेम के कच्चे धागे जंजीरों से भी पक्के हैं
1: शांति शीलो
0: कच्चे धागे
1: बिची डायरी वॉन्ट

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: नहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।